कमसा जगा मिदिया मारुडा चाहे कमाल तू आप तुम्हें डरो आप गुंडवार बगार रंजाव यान नालियान तो सिदान लबुआ साल कारी बुआ तुम्हें आत बापु बुआ तंगियन गिला चपुआ